तो प्यारे दोस्तों, सुप्रभात सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को। उम्मीद है आपकी आरजे डिबोरा की आवाज़ सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। आज मैं आपके लिए खूब सारे हिंदी फिल्में गीत और आपके मन मोहने वाले गीत लेके आई हूँ। तो सबसे पहला गीत इस खंड के लिए मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सुकून गीत, और उसके बाद मैं और भी बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत गीत आपके लिए लगाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं सबसे पहला गीत सुकून।

दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना था उस गीत का नाम था सुकून। आजकल तो हर घर में हर कार में बज रहा है ये गीत, और ये है मेरा फेवरेट सॉन्ग। और अभी अगला गीत मैं आप सभी के लेके आई हूँ, और मैं चाहती हूँ उससे पहले ये गीत आप सभी के लिए बजाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप पूरे 10 बजे तक इस पहले सेगमेंट में आप मेरे साथ जुड़े रहेगा। तो ठीक है, अगला गीत मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मस्त कलंदर का किस किस को गीत। चलिए सुनते हैं किस किस को।

तो दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना था वो था मस्त कलंदर किस किस को। एक शानदार गीत हमने सुबह की शुरुआत करने के लिए सुना है। अगला गीत भी एक बहुत ही शानदार गीत है, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सोमेश माथुर द्वारा गाया गीत हथ सुनी मैं बुलेट का है, ये बुलेट मूवी का। तो चलिए हम सुनते हैं सोमेश माथुर की आवाजों में आहत सुनी है।

था तो दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना था वो था आहट सुनी में, एकदम मजेदार आवाजों में, पुरानी आवाजें सुनकर सुबह सुबह मुझे तो मजा आ जाता है। पता नहीं आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, लेकिन ये अगला गीत भी मैं बुलेट मूवी का ही गीत आपके लिए लेके आई हूँ। गौरी बापट की आवाज में हम सुनने वाले हैं मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। चलिए सुनते हैं, मुश्किल नहीं है।

हाँ तो प्यारे दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना था वो था बुलेट फिल्म का गीत, गाया हुआ गौरी बापट की आवाजों में गाया हुआ गीत, मुश्किल नहीं है। तो अगला गीत मैं आपके लिए लेके आई हूँ, श्रुति पाठक और नरेश कामत के आवाज में गाया गीत जीले। तो तैयार हो जाइए सभी प्यारे दोस्तों, और ये खंड के लिए मैं ज्यादा गीत अब नहीं है यहाँ पे मेरे लिए, लेकिन मैं आप सभी के लिए वापस लौट के आऊंगी 11:20 में, और 2 बजे को मैं आरजे चॉइस के साथ आप सभी के मन बहलाने के लिए, मन मोहने के लिए खूब सारे हिंदी गीत लेके आने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी के लिए हम सुनते हैं श्रुति पाठक और नरेश कामत की आवाज में गाया गीत जीले।

हाँ तो दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना था वो था जीले, और उम्मीद है आप सभी आज अच्छे से जिंदगी बिताएं और जीले, ठीक है? क्योंकि कभी कभी होता है कि जब हमारे जिंदगी ऐसे ही बिना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें के साथ जब बीते जाते हैं तो हमको जीना नहीं आता है। तो इस गीत का नाम भी जीले था, तो उसी के नाम के द्वारा उसी के नाम के साथ में आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आप भी जीले, जिंदगी जीले, बस जीना है, ठीक है? तो ठीक है, अगला गीत मैं आपके लिए लेके आई हूँ, खुदाया वे, ये सलीम मर्चेंट का गीत है। तो चलिए हम सभी एक साथ सुनते हैं खुदाया वे।

तो दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना था वो था खुदाया वे। लग रहा था कि एक महफिल महफिल हवा आके हमें ये गीत के साथ, मतलब है ना, वो वाला वाइब आ गया मुझे तो ठीक है। अगला गीत मैं आपके लिए लेके आई हूँ, कैसा है ये जादू। इस गीत के साथ साथ मैं विदा लेना चाहूंगी और मैं फिर से लौट के आऊंगी आपके पास 11:20 में, यानी कि 11:20 को। उम्मीद है आप सभी मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इस बार 11:20 को मैं आप सभी के लिए फिल्में गीते, खूब सारे फिल्में गीते लेके आने वाली हूँ और आपके पसंदीदा गीते। तो तैयार रहेगा, 11:20 को आप फिर से लौट के आएगा, आपकी आरजे डिबोरा आपके साथ फिर से लौट के आएगी 11:20 को। तो ठीक है, अभी इस गीत के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी। किस किस को का गीत है ये, कैसा है ये जादू। चलिए सुनते हैं, कैसा है ये जादू।

हाँ तो प्यारे दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना था वो था आपने आरजे आ गई क्या, एक वन ऑफ फेवरेट सॉन्ग सुना था। तो ठीक है, अभी मैं लौट के आई हूँ। हेलो, ओ तो ठीक है, अभी मैं लौट के आई हूँ आपके फेवरेट हिंदी गानों के साथ। और सबसे पहला गीत इस खंड के शुरुआत करने के लिए मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, कहोना प्यार है का गीत है। यहाँ पे हम सुनने वाले हैं। तब तक आप मैं आप सभी से उम्मीद करना चाहूंगी, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी।

चाहूंगी कि आप हमें यहाँ पे एसएमएस भेजिए, आपको जो गीत सुनना है आप यहाँ पे मुझे एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला गीत, चलो मैंने गाना बदल दिया, यहाँ पे एक विलन का गीत जो है, जहाँ पे हमने श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ को देखा था, हमदर्द। सबसे पहले हम हमदर्द गीत सुनते हैं, तो चलिए सुनते हैं हमदर्द।

था। तो दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना था, उस गीत का नाम था हमदर्द, और वो था एक विलन मूवी का गीत। और वैसे भी मैंने ये गीत इसलिए पहला गीत के लिए चूज किया था क्योंकि ये एक विलेन का गीत और अभी जो अगला गीत मैं बजाने वाली हूँ, ये सारे गीत मेरे हॉस्टल के दिनों में दोस्तों के साथ हम सुना करते थे। तो दोस्तों के लिए ये

सारे गीत जो आप आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये सभी मेरे दोस्तों के नाम भी करना चाहती हूँ और आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों की SMS ज्यादा आ नहीं रही है, तो आपके SMS के इंतजार में मैं बैठी हूँ। अगला गीत हम सुनेंगे, अगर तुम साथ हो। ये गीत जो है तमाशा मूवी का है। यहाँ पे हमने देखा था दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर का एक तमाशा। तो चलिए सुनते हैं तमाशा गीत का, अगर तुम साथ हो।

हाँ तो दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना था वो गीत अगर तुम साथ हो, तमाशा मूवी का गीत, सुनने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं सोने से पहले भी बहुत सुना करती थी, और जैसे कि मैंने बोला था कि हॉस्टल के दिनों में मैं दोस्तों के साथ खूब सुना करती थी, क्योंकि वैसे भी रणबीर कपूर मेरा फेवरेट एक्टर था और बचपन का क्रश था, यानी कि चाइल्डहुड क्रश। तो यहाँ पे अजब प्रेम की गजब कहानी में हमने देखा था कैटरीना कैफ के साथ उनकी रोमांस, और इस टाइम भी मुझे रणबीर कपूर बहुत पसंद हुआ करता था। तो ये गीत मैं आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम देना चाहूंगी, तू जाने ना, और उम्मीद है आप सभी को भी ये गीत अच्छा लगे। तो चलिए सुनते हैं तू जाने ना।

तो दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना था वो था तू जाने ना। और क्या पता आप लोग क्या जानो कि मैं यहाँ पे बैठकर आपके एसएमएस के इंतजार में हूँ। वी कुंगते आ के वाला गुड बॉय मैंगमोई ते ते पोइन रे रहा हूँ मैं यहाँ आपके संदेश के इंतजार में, आपके एसएमएस के इंतजार में। यहाँ पे आपकी आरजे डिबोरा बैठी है, आपको जो गीत सुनना है आप ख्वाहिश करेंगे और मैं यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल लेके आऊंगी। तो ठीक है, अगला गीत मैं लेके आई हूँ यहाँ पे समझावा। और ये समझावा गीत जो है, इस समझावा गीत में हमने देखा था आलिया भट्ट को, जो जो है रणबीर कपूर की बीवी अभी। तो इस फिल्म में हम ती शर्मा की दुल्हनिया में हमने आलिया भट्ट और वरुण धवन को, उनका रोमांस और वो सभी दुल्हन वाला वाइब सब कुछ इस मूवी में दिखाया गया है। तो उम्मीद है आप सभी को ये हम्टी शर्मा की दुल्हनिया का गीत समझावा अच्छा लगे। तो देखते हैं यहाँ पे आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, क्योंकि अभी जो पहला गीत जो हमने सुना था वो था अजब प्रेम की गजब कहानी का, जिसमें हमने देखा था उस मूवी में रणबीर कपूर का रोमांस कैटरीना कैफ उसकी एक्स के साथ। लेकिन अब हम सुनने वाले हैं ये नया गीत समझावा, अगला गीत उनकी बीवी का रोमांस हम लोग को दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं समझावा।

हाँ तो दोस्तों, अभी जो हमने सुना था वो था मैं तेनू समझावा समझावा। तो ठीक है, अगला गीत हम सुनने वाले हैं चन्ना मेरेया। ये गीत जो है ए दिले मुश्किल फिल्म का सॉन्ग है, और हम मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। यहाँ पे मुझे इस गाना इस गीत को मैं बजाने से पहले यहाँ पे SMS पढ़ना चाहूंगी। वी कुंगते आ आर जे दे बोरा कलाउंगाई थरेंगे ओ अलुम लु तुका फैन इन जा प इन कलाउमु थ्रू अंग लोप लोपा नेक्स्ट खा इतान लिया उलिया ओ अरोंतिया ए नेक्स्ट सॉन्ग ही वी कुंगते तान लिया उलिया करोन लानवे हाल बोका तिसवान इन पुने लमा खान इन मिलाउंगाई थतू अन ओमा लल शुआ तान खान करोन लान हाल बोका चन्ना मेरे आ। चलिए सुनते हैं ये गीत मैं आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम देना चाहूंगी।

तो दोस्तों, ऐ दिल है मुश्किल फिल्म का गीत सुनकर आपको कैसा लगा? आप जरूर मुझे यहाँ पे SMS द्वारा बताइए। तो आजकल बहुत गर्मी है और बाहर भी बहुत धूप है, इसलिए मैं गाने की धुन थोड़ा बदलने वाली हूँ। चलिए सुनते हैं हाफ गर्लफ्रेंड का एक बहुत ही मशहूर गीत, बारिश। बारिश को बुलाते हुए ये बारिश गीत चलिए सुनते हैं। और स्पेशली मैं ये गीत मिंगमुई तेया गुड बॉय के वाला एलजेड साइलो और वी कुंग तेया के नाम देती हूँ। तो चलिए सुनते हैं बारिश गीत।

तो दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना था उस गीत का नाम था बारिशे। तो उम्मीद है ये मौसम की बारिश आज शाम को हमसे मुलाकात करेगी, क्योंकि बहुत गर्मी है। जैसे कि मैंने कहा था कि बाहर बहुत धूप है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पे FM 100.7 में आपकी RJ डिबोरा के साथ जुड़े रहे। तो अगला गीत और ये आखिरी गीत है इस खंड के लिए, मैं लेके आई हूँ आपके लिए जालिमा। ये रईस फिल्म का गाना है, जहाँ पे हमने देखा था एक हमारे फेवरेट, सभी के फेवरेट शाहरुख खान को। तो चलिए सुनते हैं जालिमा गीत रईस मूवी का।

हेलो नमस्ते दोस्तों, फर्स्ट ट्रांसमिशन का हिंदी के आखिरी खंड में आप सभी का आपकी आरजे डिबोरा आपकी स्वागत करती है। और इस खंड में हम आरजे चॉइस सुनने वाले हैं, यानी कि मेरे पसंदीदा सॉन्ग्स। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे साथ 2:30 तक, यानी कि 2:30 बजे तक जुड़े रहे FM 100.7 पर। और ये जैसे कि मैंने कहा था कि हिंदी का आखिरी खंड है, मैं आप सभी को खूबसूरत खूबसूरत हिंदी गीतों के साथ आपके मन बहलाने की कोशिश करूंगी। और मेरे पसंदीदा गीत उम्मीद है आप सभी को पसंद आए। तो सबसे पहला गीत मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, पिया और ए पिया, जो आतिफ असलम और श्रेया घोषाल ने गाया है। और ये था तेरे ना लव हो गया मूवी का गीत। और उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगे, क्योंकि पिया और ए पिया ही दू तक तीन अंखा अनि मैया चो वांग चो अनि ngai thatu zong zong depon ngai nom ti tak milau ngai thak sakha kan ran gen ani। तो चलिए सुनते हैं पिया और ए पिया।

हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आपकी आरजे चॉइस यानी कि आपकी आरजे डेबोरा की चॉइस गीत अच्छा लगा होगा। तो अभी जो गीत हमने सुना था वो था आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज में पिया ओरे पिया। तो अगला गीत दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, जीना जीना। ये तो आपको पता ही होगा, जीना जीना गीत हम बहुत गाया करते थे। जब आतिफ असलम ने ये गीत कंपोज किया था तब सुनने में आया कि वो खूब रोए, और किसी किसी के बारे में सोचने में मतलब ये गीत हमारे दिल को छू लेता है, मजबूर कर लेता है। तो चलिए सुनते हैं हम सभी एक साथ ये जीना जीना गीत।

हाँ तो दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना था वो था जीना जीना। उम्मीद है आप सभी को मेरे पसंदीदा गीत अच्छा लगा होगा इस गर्मी मौसम में। यहाँ पे मुझे एक SMS मिला है गुड बॉय के और से, आरजे दिबोरा लाइव डिस्कशन का अंगाई नोम इनबॉल फाइसर सॉरी इनका ओमलेट दिया मई अतिया ए हे हिंदी लापो ही इतान करन लान दो ना हे मिला ही इतान लिया लिया करन प्ले दो ना एल मिला उंगा इथाक सक दो ना। ओ और तो ठीक है, ये अगला गीत दूरो दूरो जो गीत है ये पुणे से किसी ने चूज किया है, बोला कि आरजे दिबो मिला प्ले सकवे अरुंती आचू वांगसान इन दूरो दूरो हम सभी एक साथ सुनेंगे। तो ये गीत जो है मैं आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम देती हूँ।

हाँ तो दोस्तों, अभी जो गीत हमने सुना था वो था दूरो दूरो, और सुनने में आया कि आप दूर दूर तक भी ये दूरो दूरो गीत यहाँ पे FM 100.7 में जो हमने आप सभी के लिए लेके आते हैं हम गीत, वो आप दूरो दूरो तक सुन रहे हैं। तो ठीक है, अगला गीत जो है आम वेंग नुला मोई मोई नरोनथांगा तुझको कॉकटेल टू ही इन मांगे मेक तेरे ले इंचेन तू ते तान पुन कम रोन लान गाले अतिया। तो चलिए सुनते हैं तुझको कॉकटेल टू मूवी का गीत। आप सभी प्यारे श्रोताओं के लिए ये गीत मैं देती हूँ।

तुझको गीत सुनकर मन को मजा आ गया, दिल को खुशी मिल गई। तो उम्मीद है आम वेंग, मैं जो एक खूबसूरत लड़की है मिस मोई मोई, उन्होंने भी सुना होगा यहाँ पे आप जो ख्वाहिशें फरमाते हैं हम वो पूरा करते हैं। तो ठीक है, मेरे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो ये आखिरी खंड के लिए, आखिरी गीत में आप सभी के लिए हम सभी का फेवरेट सॉन्ग सुकून बजाने वाली हूँ, आपके लिए लेके आई हूँ मैं। तो लेकिन सुकून के साथ साथ मैं विदा लेना चाहूँगी, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखेगा और अच्छे से खाना खाएगा जब तक हम हमारा फिर से मुलाकात नहीं होते हैं। उम्मीद है आप सभी प्यारे श्रोताएं अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे और ये सुकून गीत के बारे में बस मैं थोड़ा सा बोलूंगी, उसके बाद हम सभी मिलके ये गीत सुनेंगे। तो ये सुकून जो है, सुकून का मतलब है पीस। Tina ka anita at so vang soan in minron zot ka in oma hei heta po yan in RJ debo sukun om zia ka minlao shil tem ti ka kadonga sukun ka peace enge comfort enge niang ha dam na kan ti nge mizaw chong soan ti na ka ani ah so vang soan in dikan om zen she to obo ka ngay nom titak ka nin sukun ka minlao ngay tlak saktur kan kan ron ngin ngal bok tsewa soan in heta hean SMS pakati kan tsyar le lo ka nga lal din puya hianin RJ iplay le tur kanang matan le lau ngay tlavete zong zong tan le ka chante veng shang shang amite tan darlo na kapu om puy te chung tan kapu om puy te chung tan lal din puya falcon veng lai FM ngay sang MM tu tan aron tia kalau char sual de ole kanit sa milau ngay dam siyam donan niya. To thik hai, ye akri git me ap sabhi pyare shotao ki nam deti hu ke ngak te khol shing good boy lal din puya falcon LZ sai lau vi kung te yameng moi te ate le adang zong zong po khanin min lau ngai thak sakve ka nga nang ma ni tan liao liao ka ron play do ne to chele sunte hai sukun.

0: Hei, Akashvani FM zo weza puin pasari changa puan chua ani June ni ruk sang ni som ni paruk ani a tlaidar ni le minit som nga pakua ani kan program thok khat na chu kan lo zo ta a ngai thatu zong zong te kan program min lo ngai thak sak awang in lom thu kan soi ni primary channel a changa program lak chhon kan ngai thak chhun zomang program puang tu hi vilal ni zwali kania FM zo hi tlaidar li le minit som ni pariata kan lo le lenga lo ngai thale cheu turin kan som cheu
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में विशिष्टता बनाए हुए है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में एक रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हर घर और खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जो 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे जॉलवी। आज दोस्तों, पूरे दिन आपने क्या किया होगा ये सोचकर मैं इस स्टूडियो में पहुंची हूं, और पूरे हफ्ते आपकी आवाज, आपके एसएमएस बिना पढ़े मेरा दिन बिल्कुल भी बहुत ही बेचैन था। मेरा दिल बहुत बेचैन था आपके बारे में सुनने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ आपकी आरजे ज़ोल बॉय, और आप अपने प्यार भरे एसएमएस हमें भेजना फिर से शुरू कीजिएगा। इस खंड में हम सुनेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे गीत, जो कि ये खंड है ठीक 5:30 बजे से 6 बजे तक चलने वाला है, जो कि पूरे आधे घंटे का सफर है। और इस खंड में हम सुनने जा रहे हैं जिसमें टू मिस्टर एक्स और जिंदगी ना मिलेगी, 2 बारह फिल्मों के गीत। सुन सुन सुन एसएमएस लंपंगा कन मिशात खोखें कंथिदोन में वी कुंग ते गुड बॉय ते ओ मेंगमोय ते आ के वाला ओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखा अरो लंगले सुर सुर दोन हैं कश्य आतुन का त्वान इंग मा चंचिन का थानी शे लवा इन चंचिन ते इन हुन मन दान ते खा खा ओ करों शे चाक ले तो खोप में आ स्टूडियो हैं करों ठुरूप में नी नार जे ज्वाल बोई ही मोम सुवांग चुआन ओ कहाँ खेल कलो थल हेल चेउनी तिखा का नान सोई दूनी। तो चलिए दोस्तों, इस खंड की सबसे पहली शुरुआत के लिए हम सुनते हैं।

दोस्तों, आपने जो सुना वो था केके जी की आवाज में। अभी अभी बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। तो चलिए, यहाँ मैसेज आया है और अंथिंग तत्सुर सुर इन लार्ज तत्सुर सुर मया वी कुंग ते ह्यानियम और जे जवाब बोई के जवाब बोई ओ चंग पोई दिस चलाउती ही शाची वी कुंग ते ही च ओ अप्यांग लवांग ती ही अलाउ बेर बेर दिजिंग मी ही निकर निकरिंग छे नमो अचन चु मिन तिलिम तो मो ड्यूटी ति नुआम तो ही निच्यांग लु तुका मिन लो विल चर चर ओ एंड गुड बॉय ने लिखा है आर जे स्वाल बॉय कन लो वंगाई मन से वे बि पेम संते मो कन लो ति मन सिन इ ल पेम एम लवा कलो मे लो ड्यूटी रिंग रो तुन कार सु परमा तुई रियलिटी न इन बोरो कति ऑफ देवा क्लेम इन द पांगाई ले ट्रन तो ए नेक्स्ट नंग ले ड्यूटी पुई मेक द बा का वी कुंग ते आ जेल सा मल दिन पुई फल कोन वेंग लाई मेंग मोय ते ओमेगा सांग ते पार पारि पु हाक ते पा मा मुनी सो मिसे सांग अतम मयन वाई तानि मय रस रंतिया गुड बॉय हिया गुड बॉय हिया ने ना मिंग हेन पुजो खोपा गुड बॉय ति छु ओ नो पंग मि पनो पंग फेल छा ति ना खानिया द्रो अमा हि बॉय एले इन ति सेम छु कछ छुंग लो ना इन अ मिंग हि अपुजो हि कतिलु तुका मो नारे रेंग हि आ बिमल अंग मै पोदु तोक लो ह्यानि न होल सेल ह्यानि रोन थान सख छि न चुवान स्वानिन ओ इ अरिल रुही अजाउ अरिल रुही छत्स्या हि लंग छिनिन के श्या आ चुवान जा गुड बॉय चुंगा कलोम तक सेट कनन दिवेल नि चु स्वानि नि ए purama tui rial kan enge sms te hi alo enge ak char tur hi awang hi kalauti thina ke po amairo chu hetang te alo ni ta ga chuanin e puramale an chung kwa te kator pui tak setani mi mal tak po hian e fm studio kan duty atanga kan studio lo alum tu mo sms lo alum tu hi ania a message aron thon reng china kan studio kan chan to chuanin aron lang aron aron lang reng ti la kan sei swal lawang chotiang khop chuanin fm zo oi hi a hlut em em mai chuan chuanin a he athina po hi kan twar tak setin ka sha phe ka chuanin shi om hi ka ti tak setani a enge SMS char tur han om tolo te hi alung len thak a khor thak ngoi ngoi ti hi a tun huna hian studio tang hian in kan sei dua e FM zo o hian in kan ui tak se ta kan sun tak se ta ni ti kha kan sei le du bokani to chere do so aage badhte hain next time sunenge ek bahut hi pyara song ye hoga zindagi na milegi dobara film se dil dil dhadakne do

तो चलिए आपके मैसेज की ओर बढ़ते हैं. मैं मोइते ह्यानी इंसॉल भाई नमस्ते ड्यूटी नो आमले रंती आ ड्यूटी नो आमले सब दन मैं मोइते मिलोंगा थारिंग रो आ कि वी कुंग ते ह्यानी कपू के वाल खान रन उ वेल से लो नुई ति सबांग लो मे नुई ति सबांग लो मे मे मोर ओ वी कुंग ते मिलो दो थे तक खान ने लौ हाक ते ओ कछा छले दोन कपू के वाल खान रन उवेल से लो नुई ति जबांग लो मे मे सु रम बॉय लाइ पो रम मुतुम ng तो अछोंग ते नन रेम ति लो वांग रम मु वे लो मे मे खा निया अनो पंग ते सो लो शिम शिम आइन ति इ तोम क्वान मे मे नि खा इ तोम न जोंग सो गो बो तो रन ति ओय कमान दु चिन वी कुंग ते हि सुमा वा mark so ma mark za ka pe hin top me o he vi kung te ke wal aron aron lang ve le ngal o lo ngai thar om rj zwal boi nang ma hi ka star de uta riau me se aron di ta vel phodani zui shem kung te chu thuron lak nan mang du su achan chu mo ep tu pol ho tu ber

तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सब से अलविदा लूंगी। मेरे जाने का वक्त आ गया है और मैं फिर से वापस लौटने वाली हूँ ठीक 9:02 में। दार कॉले मिनट निया करण केर ले दोना वी कुंते ते छान फेल दोम तक तक ते एस एम एस रंथन तो संग संग देखा दार कॉले मिनट निया कनी तोंग ले छेउ दो ने ओ इन सई तुर खलो खोल खोम ले चर चर ला दार कॉले मिनट निया कन पुआक छक ले दो ननी। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लूंगी। ये प्यारा सा सॉन्ग आप सबके लिए कन्ना नुनुंग बेर तुर ही वी कुंते ते के वाल ते मिंग मोई ते गुड बॉय ते सांग पुई पा ते ले इन सवाई तान खान कलान ओ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

0: This is Akashvani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants are Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Sonu Sood. Ye Akashvani hai. Prastut hai Vishesh Shrinkla. इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक. इसमें भाग ले रही हैं प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद.
1: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government, and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. Hum aap se jo aarthik sashaktikaran hua hai pichle 12 varshon mein NDA sarkar ke is karyakal mein, uske upar hum aap se discussion karna chahenge, chahe wo Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से तीन में से दो जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए. सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
2: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ. प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता. मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ. और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति. उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता. और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत @2047 है
1: जी.
2: उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है जो दिखाई देती है. मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है. इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके. और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थीं, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया. और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
1: जी,
2: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी. तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61%, लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमेन. सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी, जनधन खातों की सफलता. लेकिन वो वही नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाए वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे. लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूह

0: के माध्यम से 3 करोड़ की पहले बात की थी, लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं। मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया। देखिए, पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे,
1: जी
0: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और वो महिला बन जाए तो
1: जी
0: लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और कि ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना, जो पीएम मुद्रा योजना है, उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स ए ह्यूज अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है, वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी हैं। और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लखपति से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं, विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही हैं उन एमएसएमई को, जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और पी महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे लगभग। वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी, और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी। क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स, तो वो
1: एब्सोल्युटली
0: काम भी हो रहे हैं
1: जी
0: जी।
1: जी
0: और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है। और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है, और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए, लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है, कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं? तो शी मार्ट्स का कंसेप्ट लाए हैं। और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं, तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं, वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। तो
1: एब्सोल्युटली
0: ये
1: एब्सोल्युटली
0: सशक्तिकरण मात्र नहीं है जी, ये आजीविका के मूल्य हैं जी।
1: आदित्य जी, सुषमा जी हैज सो ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड यू नो द वेरियस वेज इन विच फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर वुमेन। इनफैक्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एंटरप्रेन्योरियल इंक्लूजन इन विच वुमेन हैव बीन मेजर बेनिफिशरीज, एंड इंडिया इज लीडिंग इन इंक्रीजिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज, 3 करोड़ प्लस वुमेन लेड MSMEs are contributing to the country's progress, and 45% of DPIIT recognized startups have female directors. How do you see this inclusion of women in a big way in the economic mainstream of the country?
2: I think what you just described is the result of policy framework and policy intent of the government under Prime Minister Narendra Modi, who has clearly said that women are one of the four pillars of Viksit Bharat. If the country has to attain the developed country status by 2047, it is imperative that women are given conditions and, you know, where women are handheld to achieve their true potential. So what we are seeing today is that, driven by several life cycle based approaches through the policy framework of the government, we have schemes now that have targeted interventions through sectors like health, education, housing. There's digital access, sanitation, then you have financial inclusion. What I'm basically trying to say is women are today in a position through the policy framework to lead self-help groups, launch businesses. You know, they're breaking barriers in science, defense and sports. We just saw JEE advanced results come in, and how women were leading over, you know, the girls were leading over boys in several of the top positions. So in STEM disciplines, Indian women are leading. not just in India but

0: schemes to the government system, and you decode and demystify all the complex rules of the financial inclusion schemes. So that's where the Sakhis fit in. And you have Sakhis in different sectors, like you said, Pashu Sakhis in the agricultural sector. So these women are helping peers, their other women colleagues, understand what are the benefits available and avail them. Yeah, Sunam.
1: Sushma ji, Aditi ji ne life cycle targeted schemes ki baat kari, aur jo daughters hain, unke education, unke birth se hi unke liye aage ki unki jo future hai usko secure karna. Agar hum PM Sukanya Samriddhi Yojana ki baat kare, jiska zikr Aditi kar rahi thi, to usme jis tarah ka vikas hua hai, agar hum dekhe to financial year 2014-15 mein 4.2 lakh accounts the, aur financial year 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 4,53,00,000 अकाउंट हो गई है. टोटल डिपॉजिट्स 0.001 लाख करोड़ थे FY15 में, जो बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपीस हो गए हैं FY25 में. सो ये फिगर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है, उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है?
2: बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी, ये वही है. और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय महिलाओं का लिंगानुपात, द जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गॉन डाउन टू बिलो 900, विच हैज नाउ ऑफ कोर्स बिकम 929, एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट, और वॉज बिकॉज ऑफ दैट. और उससे ये लाभ हुआ, ये लिंगानुपात तो बढ़ा ही बढ़ा. आप देखेंगे कि महिला नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज ए ह्यूज जंप. और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप JEE देख लीजिए, आप CBSE देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, आप BA MA PhD यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग मेन in almost all achievements. They've yet to outnumber them in total enrollment, but they are outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए, कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए, और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी.
1: बिल्कुल.
2: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं, जहां से आरंभ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके हैं LPG कनेक्शन, फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ. फिर मातृवंदना योजना, जो PM मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ वुमेन वर एक्सेस्ड. और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत, जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर.
1: For the universal immunization program, also a lot of efforts have been made, as you are referring, you know, till March 2026.
2: Yes.
1: More than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered, and 8.73 crore women were screened for cervical cancer. Ek
2: yes.
1: aur jo aapne baat kari matritv support di ja rahi hai. Ji. So maternal mortality rates bahut niche aaye hain, infant mortality rates niche aaye hain, aur institutional deliveries 68% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है. जी 98. बिल्कुल 98%. तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
2: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है.
1: जी.
2: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं.
1: जी जी.
2: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी. फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%. सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से. सो ODF फ्री इंडिया. देन जो मातृ मृत्यु दर, मोर्टेलिटी एज यू सेड, which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
1: Yes.
2: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 36 weeks, 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together, yes, which will surely lead to healthier generations in coming times.
1: And also when women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know, due to the Jal Jeevan Mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
2: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. Mm-hmm. You can see the women have dreams about their children now, mm-hmm, and especially the daughters. Mm-hmm. I have come across, as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up. Aur Modi ji jo baar baar kehte hain, swasth nari hi swasth rashtra ke janmadata hai. Aur swasth rashtra hi sashakt rashtra ban sakta hai. This is the linkage between women's health and the empowered or Vikasit Bharat, as we say. Aatmanirbhar Bharat bhi usi mein mila hua hai.
1: Absolutely. Aditya ji, coming to you, agar hum safety ki baat kare, dignified life ki baat kare, to jo mission shakti ek mission wo raha hai muhim sarkar ka, jiske tahat unhone kai aise initiatives wo laaye hai jisse ki mahilaen surakshit mehsoos kare, jisme abhi jo latest hai she box portal, jo digital platform hai sexual harassment complaints ka workplace pe unko register karne ka, iske bare mein aap thoda sa bata sakti hain ki iska विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
3: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का, जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं। जैसे हमें याद आता है आरजी कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ, ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया। निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए, लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है। और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए। मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती। हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का, जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है, जैसे हमने सदियों से देखा जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया। मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए, सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी। एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है, समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है। और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स। जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है, वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है. अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो. पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सुनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ जाता है.
1: बिल्कुल, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है. और जो भी व्यवस्था है, 15,000 प्लस विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन है इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया, 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700 प्लस फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है. लेकिन इन सबका भी इस्तेमाल, ऑफकोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आए और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो. सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी.
3: बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है. दूसरी बात यह है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती है, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में. तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा. वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं. देखिए जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं. आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था. आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है. अब अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, और ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज. वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है, ना कि महिला पर है जो पीड़ित है. सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि महिलाओं के साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है, और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है.
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई है, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक वुमेन लेड एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड है और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले. सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी.
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है which is easier for women especially, if you don't have to go anywhere and you can still access most of the facilities. Nothing better than that. That is almost best because अपने आप में movement या आवागमन जिसको कहते हैं वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है. इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ. लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था. मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे. देयर कांट बी अ बेटर रेसिपी बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच वीमेन नीड यूजुअली एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स ऑल्सो, like they're coming up now. But with that, you also need latest skills because skills keep changing. And the market needs different kinds of skills. At times, they may be digital skills in coming time. And you see, women are really very good at that because this is heart and hand, both going together. And then if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also, I would say, or fields, then they're ready for the world. And this government wants when women-led development will happen. It's one medium, so this is the first health, after that, security. उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो हैं ही, वो राजनीतिक सोच भी है जहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है. 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%. और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं, ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी. और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी, ये लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार हो.
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है, जो पुरुषों से कुछ ऊपर है. और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका. एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है. सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी.
2: बिल्कुल, आई विल से दैट, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया. आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज. आई कैन से विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, फर्स्ट टाइमर, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन में तो फर्स्ट टाइमर सभी होते हैं, सो इट रियली डजंट मैटर. दे लर्न, एंड आई हैव मेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु से दैट वी क्वेश्चन्ड अवर ऑफिस व्हेन दे से दिस कांट बी डन. तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई आर वी हियर. तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी. आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, उन तक पहुंचे. और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्पेशली इन ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा. और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट इन एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी.
1: अदिति जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
3: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं. तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है. अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है. वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए. वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है. इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते. तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया, तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा.
1: सो एज इंडिया मूव्स टूवर्ड्स द गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047, The role of women is increasingly becoming central to this journey. Across sectors, women are contributing as workers, entrepreneurs, farmers, innovators, and leaders. Sushma ji, Aditi ji, thank you so much for this insightful and inspiring discussion.
2: Thank you.
0: In this special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhla ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal Mahila Sashaktikaran ka Parivartankari Dashak. इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया.

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जोर 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे जॉल्बई। हमारे स्टूडियो में इस वक्त 9:05 बज रहे हैं एंड आज के लिए हमारा सबसे आखिरी खंड होने जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आप हमारे इस आखिरी खंड में अपना साथ देंगे और अपने प्यार भरे एसएमएस के साथ हमारे इस स्टूडियो को चार चांद लगा देंगे। इस खंड में हम सुनने जा रहे हैं बहुत बहुत प्यारे प्यारे गीत। और यस दोस्तों, आप अपना मैसेजेस जो है वो हम पर बरसाना फिर से शुरू कर दीजिएगा। खुंगे वी कुंग ते ते के वाल ते मिंग मोई ते ते गुड बॉय ते हो खा ओ इन रन इन इन रन इन संग मर सौ दोन हिया निन कशिया तो ना हिया चुवांग चुआ निन बेसे ना सांग तकने खा निन कलो थीर से नार जे जवाल बई हियान ओ ale hesek me dai han lamoi tak tak an ngai thadona chuanin thadu zong in nei pokhanin o athan athan the vek donani an kan ti de uhluai te ang o ti chuanin is khand ki sabse pehle shuruaat karenge hum apne ek bahut hi pyare geet ke sath dosto jo ki umeed karti hu is waqt mujhe jo sunne wale hain aapko bhi zarur zarur pasand aaye। तो चलिए इस खंड की सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ जो कि है हमारे प्यारे क्या कहूं मैं आतिफ असलाम जी की आवाज में, जो कि है तू जाने ना और फिल्म है अजब प्रेम की गजब कहानी। तू जाने ना कंती सानी तू जाने ना ती ओम जासु इंगे इशे सी लवा ती नानी मो इंगे कनिन मुआ कनिन तोंग थी ना मो कनिन कोम थी ना ते पो न्यांग चु मा रो चु कथिन लुंग छुंग रिल ला ओ इताना फीलिंग्स कने ही इशे थ्याम सी लो मो अवहन बेदन थाक थिन तक एम तेरो चुत्यांग ते पो चु चुत्यांग तोंग मेक ते पो चु कन लो ओम मे थे चुंग हो जंग जंग ते तान सुन हे लाही कन थन सकंग ओ तो चलिए सुनते हैं दोस्तों ये प्यारा सा सॉन्ग आतिफ असलाम की आवाज में तू जाने ना।

बहुत ही प्यारा सॉन्ग था पहली नजर में हमारे अंश कश्यप की आवाज में, और ए मैसेज कंसिया रंगा के वाला ओ फाइनली आर जे जवाल बोई नीचे न कटेक्स खा इचिया मन लौ खा पोई क ति टॉप कन कुमा इन रॉयल रैंक खा ओ इन सोई नो पन पे तुम सुरन ते के वाला छेन ही आफ याम तो ही थो मखते ए मे ओय ओम लौ देव देव या न रन थो छी न तिरो वी कुंग ते अ मखते ए ओ असुंगा हे वी कुंग ते रन लंगा इवान ने लु तो कि सेगमेंट ही सो टॉप थिंग का तेल पुई थे से आरजे चाम चामी लाइफ फोन का तेल थे दोन न वालुंग ले ला मान थलन लाइफ डोंट सी आ आरजे एनी ती वान ने ले डोंट सी आ चेरन त्या ओ सादिन सु आ पे छम मन नंग वेल कन नी तेरो कवा हन वान ने ओ आरजे एनी ती ने ने गन वान ने डोंट जाइन सु चा आरजे चाम चामी लाइफ का अनंग मन डोंट लो त्लात मेबी कुंते आ लुंग ले ला मा इन स्वान पे दोन अमेरो चु विकुंग दे इति फेर लोवे शिम शिम हि कतिया आ शिम शिम इन मो आ एंगे हे ए लुंगले ला मा लथन ते पोलो नि मा से के मा नि ला मा हे एंगे चाम चामी पार जे चाम चामी पोन इन ला दु जोंग ते पोखा रन प्ले थे मे तिया आ एंगे इ कार्टून सेक मे न्यांग जु तरोजा नि जु इन दे लो दोन इन दे लो दोन नि हि तरो विकुंग ते एंग पोनि से RJ cham cham mi khai tha tham lo nge kan be se o tichuanin kan hun la hi gliam duak duak me chin si atro chali next time sunte hai ek bahut hi khas geet jo ki hai sonia tu ye bhi bahut hi romantic aur pyara song hai special takin meng moi te te ke wala ka u ke wala te bi kung te te din pe fal kon le chian ti tan te khang song song tan le tu na mi lo ngai tha tu in lama te ni mo zin ko nga te ni mo mi lo ngai te mi lo ngai tha tu fm so oi ru no bel tu song song te tan khanin ka lan sa vek che uni he la hi mo em em ya chali sunte hai sonia tu

0: दिल तेरे नाम कर बैठा, वो सोनिए जी सजना खो बैठा।
1: दोस्तों, आपने जो इस वक्त सुना था वो था हमारे पंजाबी एक्सेंट में, पंजाबी लैंग्वेज में, और बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, सोनिए तू मेरा दिल बन जा। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये होगा यस और तो ना मिलूंगा इतना तोते तान खान का थन सकले दुआ रुक मिलूंगा इतना रुक रुक तोते पोही इन लो ओम थे या सुवान सुवानीन और मिलूंगा इतना तो सॉन्ग सॉन्ग ते तान खानीन रुकले रुक लो पुआ इसे मैं सुथन खेल लो सुंग पुआ मिलूंगा इतना तो रिनोम तक एफ एम मिलूंगा इतना तो सॉन्ग सॉन्ग ते तान खान और रुकी कहाँ है तू तो?